0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच

0: सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi has positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress, AITC, not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by commission by 11 a.m. today. The commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in 3 subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Ministry has notified the Passports Amendment Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv next generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. The ceremony will be attended by Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu. The Defence Ministry said that induction of these platforms is another step towards strengthening the indigenous capabilities

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह और मैं हूँ आज की सुबह पॉपी। जी हाँ, आज 18 सितंबर है। 18 सितंबर की सुबह को ताजगी के साथ कुछ खास बातों को लेकर एक बार फिर से हाजिर है, तो बने रहिए, साथ रहिए। आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड पर, कार्यक्रम का नाम है सुहानी सुबह।

18 सितंबर की सुबह दोस्तों, आप पॉपी के साथ सुन रहे हैं 100.1 एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम सुहानी सुबह। और आपको बता दूं, आज का दिन जरा खास है, खास करके मतलब हम मना रहे हैं आज का दिन विश्वकर्मा पूजा के साथ। जी हाँ, विश्वकर्मा पूजा शिल्प और निर्माण के देवता यानी भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। और ये पूजा खास करके मजदूर

मजदूर, कारीगर, इंजीनियर्स, मिस्त्री तबके के लोग और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का त्यौहार है। इस दिन लोग अपने औजार, अपने मशीन्स और जो भी चीज़ उन्हें लगती है अपने दिनचर्या में, उनकी पूजा की जाती है और साथ में विश्वकर्मा यानी कि वो जो मूर्ति है वो उसकी भी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही द्वारका नगरी, इंद्र का वज्र, रावण की लंका और पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। उन्हें संसार का पहला इंजीनियर या हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट भी माना जाता है। इनके चार हाथ होते हैं जिनमें स्केल, हथौड़ा और भी दूसरे औजार होते हैं। और ये खास चीज़ होता है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सारी की सारी बातें हम अभी कैसे बता दें, क्योंकि हमारा ये गीतों का कार्यक्रम है। 7:10, 17 सेकंड आप सुन रहे हैं सुहानी सुबह। सुनते रहिए, साथ रहिए मिट्टी की खुशबू के साथ, ओनली ऑन 100.1 FM गोल्ड पर सुहानी सुबह।

जी हाँ, कुछ खास बात तो है क्योंकि आज का दिन आम नहीं है, आज विश्वकर्मा पूजा है और इस विश्वकर्मा पूजा के दिन निर्माण के देवता यानी कि गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन की पूजा की जाती है। लेकिन सही अगर आप देखें ना, ये जो पूजा का जो जश्न है, पूजा का जो माहौल है, इसका नज़ारा अगर आपको देखना है तो उसका असली जश्न मंडपों में नहीं बल्कि बाजार में दिखता है। जी हाँ, मतलब मंडप में तो दिखता ही है, लाउड स्पीकर्स बजते हैं, जो मंडप है वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, हमेशा एक इंटर कंपटीशन हो जाती है कि हमारा मंडप ऐसे हो, हमारा मंडप वैसे हो, हमारा मंडप सबसे श्रेष्ठ हो, हमारा पंडाल जो है वो सबसे खास हो। तो ये सब तो होती हैं, ये जो आपस में जो एक वेल्दी कॉम्पिटिशन, हम इसको कहेंगे एक वेल्दी कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन, मतलब हम थोड़ा सा बजट ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, इस बार हम वो करेंगे, तो ये सब चीज़ों के साथ साथ जो वाकई जो रौनक दिखती है वो रौनक दिखता है बाजार में। आम दिन अगर आप देखें तो पूजा के दिन 8-10 बजे तक दुकानें खुलती हैं, पर पूजा के दिन 6 बजे से ही दुकान खुल जाते हैं और हर दुकान पर ये लिखा रहता है कि भाई आज का दिन दुकान खुली, भले वो सैटरडे हो, संडे हो, कई कई इलाकों में बटी हुई रहती है कि कोई कुछ दुकानें बृहस्पतिवार को बंद रहेंगी या कुछ दुकानें संडेज को बंद रहेंगी, लेकिन पूजा का जब माहौल होता है तो सब दुकान खुली रहती हैं। भाई सभी चाहते हैं कि बिजनेस भी हो पूजा के साथ, लोगों की आमदनी भी बढ़े, तो ये सारी बातें तो होती हैं। और फूल बाज़ार की तो पूछे ही नहीं। जी हाँ, फूलों का जो बाज़ार है उस बाज़ार में तो पैर रखने की जगह नहीं होती है, गेंदे के पहाड़ लगे होते हैं, एक से बढ़कर एक माला, और वो देखते हैं आँखों को इतना सुकून मिलता है क्योंकि जो फूल है वो नेचुरल है। हालांकि मार्केट में आज के दिन नेचुरल फूल के साथ साथ सिंथेटिक फूल और बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जो असली फूलों का जो खुशबू है ना, उसके क्या कहने, साथ में बेलपत्र, आम के पत्र और नारियल, सिंदूर, चंदन की, चंदन का जो एक महक, मतलब, और उधर से फूल वाला चिल्लाएगा, दादा फ्रेश शिवली निये जान, शौकालेर तोला, एकदम एकदम फ्रेश फूल, तो ये एक माहौल तैयार करता है और ये जो माहौल है वो बड़ा ही खुशनुमा होता है। रंग, रोशनी, भीड़ सबके साथ ये जो नेचुरल चीज़ की, जो प्राकृतिक चीज़ की जो महक फिजाओं में होती है, वो फिजाओं को, वो हवाओं को और भी खुशबूदार बनाती है।

बस इतना सा ख्वाब है कि हर तरफ खुशी हो, हर तरफ शांति हो, हर तरफ लोगों में वो कहते हैं ना कि आत्मतुष्टि हो। जी हाँ, तुष्टि हो, संतुष्टि हो, और इसी के साथ हम पूजा और अर्चना करते हैं। वैसे आज का दिन, ये विश्वकर्मा पूजा मतलब किस प्रकार से होता है या क्यों होता है वो आपको बताना चाहेंगे कि ये पूजा हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है, जो कि आम तौर पर 17 सितंबर को पड़ता है, लेकिन इस बार डेट में थोड़ा चेंज हुआ है और वो 17 की जगह 18 हो गया है। दरअसल इस दिन सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इससे कन्या संक्रांति भी कहते हैं। और साथ ही आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी और उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक भक्ति है, एक समर्पण है। इस दिन सबसे अलग दृश्य जो होता है वो कारखानों और वर्कशॉप में देखने को मिलता है। सुबह सुबह मशीन, औजार और फैक्ट्री की साफ सफाई की जाती है। इनफैक्ट पूजा के दिन नहीं, पूजा के पहले ही उसकी साफ सफाई की जाती है। औजारों पर तिलक और फूल लगाकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि यही उनकी रोजी और रोटी के साधन है। फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बंद रहते हैं और कोई काम नहीं किया जाता है। बड़ी फैक्ट्री हो या छोटी फैक्ट्री हो, हर फैक्ट्री आज के दिन बंद रहती है। और बंगाल में एक ख़ास बात बताना चाहूँगी, वो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि विश्वकर्मा भगवान के चारों हाथों में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, साथ में पतंग रखा जाता है। जी हाँ, पतंग का एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत वैल्यू माना जाता है। और आज ही के दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन, पूरे ईस्टर्न जोन में यानी कि पूर्वी भारत में पतंगबाजी बहुत की जाती है, पतंग को उड़ाया जाता है। हर जगह आपको पतंग ही पतंग आज के दिन दिखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के दिन रान्ना पूजो यानी कि रंधन पूजा भी की जाती है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले जब पतंग की बात हुई है तो एक गीत पतंग पे तो बनता है, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत पतंग के ऊपर।

जी हाँ, काई पोछे भले आप सुने ना सुने, लेकिन हर जगह भोकाटा आज आप सुनेंगे। हर जगह, हर छत से ये आवाज सुननी पड़ेगी। और वो कभी इधर काट रहे हैं, उधर काट रहे हैं पतंग, और कुछ नहीं। तो ये है एक खास बात जो आज के दिन मनाया जाता है। साथ ही आपको बताएं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन रान्ना पूजो यानी कि रंधन पूजा भी होती है। जी हाँ, ये पूजा जो है बंगाल का एक सबसे पुराना और पवित्र त्यौहार माना जाता है। इसको अरंधन या ठंडा रान्ना भी कहते हैं और ये विश्व पूजा वाले दिन ही मनाई जाती है। रान्ना का मतलब आपको मालूम है, खाना बनाना, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर मैंने बता दिया जिन्हें जिनका बांग्ला थोड़ा वीक है या जिन्हें मालूम नहीं, रान्ना का मतलब होता है खाना बनाना और अरंधन का मतलब है चूल्हा ना जलाना। इस पूजा का मुख्य नियम है कि पूजा वाले दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जो भी खाना है वो एक दिन पहले रात को बनाकर रखना पड़ता है। दरअसल विश्वकर्मा पूजा से एक दिन पहले रात को घर की जो महिलाएं हैं वो मिलकर खाना बनाती हैं। और इसमें बनता क्या है, इसमें जो बनता है, जो खास चीज है, वो है पानी में भिगोया हुआ चावल जो कि बासी होता है, ओवरनाइट होता है, फर्मेंटेड होता है। ये इस पूजा का मुख्य प्रसाद है। कोचु साग, इलिश मच भाजा और तकरीबन 5-7 तरीके के जो फ्राई होते हैं, हालांकि फ्राई खाना मना है, इट्स नॉट हेल्दी, लेकिन एक दिन ये चलता है। और नारियल के साथ कोचू का जो साग है वो बहुत ही प्रिय है इस त्यौहार में। साथ में इलिश माछ, किंग ऑफ फिशेस जिसे कहते हैं, इलिश माछ भी बनाई जाती है। और सिर्फ यही नहीं, 5-7 तरीके के जो फ्राई हैं जैसे बैंगन, परवल, बरबट्टी और भी बहुत सी जो फल जो माफ़ कीजिए जो सब्जियां उपलब्ध

0: धोती हैं उनका भाजा बनाया जाता है। खाना बनाने के बाद मिट्टी के चूल्हे को अच्छे से लीपा जाता है। अब सोचिए, आज के दिन मिट्टी का चूल्हा तो नहीं है, लेकिन हाँ, गैस को अच्छी तरीके से साफ किया जाता है, उसके ऊपर सिंदूर, महावर जिसको आलता कहते हैं, वो लगाया जाता है, और चूल्हे के पास मनसा देवी की डाल लगाकर उसी चूल्हे को माँ मनसा के रूप में पूजा की जाती है। अगले दिन यानी कि विश्वकर्मा पूजा के दिन पूरा दिन चूल्हा ठंडा रहता है, घर में कोई गर्म खाना नहीं बनता और सबको पिछली रात का जो बनाया हुआ खाना होता है उसे खाना पड़ता है, और इसे पांता भात भी कहते हैं। वैसे एक बात तो है कि क्या विशेषता है, मतलब क्यों मनाया जाता है, इसका अगर धार्मिक कारण देखें तो माँ मनसा नाग देवी हैं, और माना जाता है कि इस पूजा से घर में सांप का डर नहीं रहता और बच्चों की रक्षा होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भाद्र महीना यानी भादों के महीने की गर्मी के बाद पेट में गर्मी बढ़ जाती है, आए दिन आपको डिसेंट्री डायरिया की शिकायत होती है। पांता भात और कोचू शाक पेट को बिल्कुल बिल्कुल कूल रखते हैं, साथ ही साल भर जलने वाला जो चूल्हा है यानी कि गैस, अब तो चूल्हा चला गया, मुझे मालूम नहीं किनके घरों में चूल्हा है, लेकिन अगर हम चूल्हा पकड़ लें या गैस पकड़ लें तो इसको आराम दिया जाता है, इसको एक दिन के लिए अग्निदेव को ठंडा रखा जाता है। और आज सच पूछिए तो कोलकाता शहर में ये रिवाज कई जगह कम भी हो गया है, लेकिन हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर जैसे गांवों में आज भी हर घर में ये पूजा बड़े श्रद्धा से की जाती है। ये पूजा हमें अन्न और चूल्हे का सम्मान कराना सिखाती है। तो ये थी विश्वकर्मा पूजा और राना पूजा के बारे में बहुत सी बातें, लेकिन घड़ी कह रही है कि मुझे और भी जो हमारा नॉर्मल सेगमेंट है, जो कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं उसके बारे में बताऊं, तो सुनते रहिए, साथ रहिए। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर सुहानी सुबह।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

कुछ खास खबरों के साथ भी आपको रूबरू करा दें। जी हाँ, आज 18 सितंबर है और राज्य में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि प्रथम अन्नपूर्णा दिवस पर महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है और साथ ही अब से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घर की मालकिन परिवार की महिलाएँ ही होंगी। और उन्होंने कहा है कि राज्य में 50 लाख से, जी हाँ, जो राज्य सरकार से जो बातें सामने आई हैं उससे ये पता चला है कि 50 लाख से अधिक नए घर बनाने के लिए जो सूची है वो तैयार की गई है और उन घरों का जो स्वामित्व है परिवार की महिलाओं के नाम पर ही किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नई सरकार सिर्फ भत्ता देना नहीं चाहती बल्कि राज्य में सुधार करने के लिए बहुत कुछ कदम उठा रही है और इस सरकार ने राज्य की हर बेटी और महिला की रक्षा करने का संकल्प लिया है। और साथ ही में अब ये कह सकते हैं कि घर की हर बीवी, आप सोच लीजिए, बीवी नंबर 1 है,

जी हाँ भाई, ये तो बड़ी गर्व की बात है कि हम अपने, मतलब जो भी पुरुष हैं वो अपने बीवियों को लेकर बहुत ही पोजेसिव हैं, और होना भी चाहिए भाई। प्यार है तो वहाँ पोजेशन तो होगा ही। लेकिन देखिए, हमारी स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 7:46 और सुहानी सुबह में अब तक मुझे मौसम के बारे में बता देना है। और मौसम के बारे में जानकारी देने से पहले बता दूँ कि पिछले 24 घंटे में मौसम का जो हाल था वो कुछ आपको मालूम ही है कि दिन भर बारिश हुई है और गरज के साथ छींटे भी थे, और जो तापमान था वो जो रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया, वो अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम तापमान जो दर्ज किया गया वो 25.8 डिग्री सेल्सियस। ये थी कल यानी बीते हुए कल के तापमान के बारे में। और अगर आज को लें, जी हाँ, आज का तापमान, ये अनुमान किया जा रहा है कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस बनी रहने वाली है। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि कल की तरह आज भी बारिश होगी, और मतलब हल्की फुल्की नहीं, काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है। तो बाहर निकलने से पहले अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखें, वो जो रेनकोट हो या योर अम्ब्रेलाज, इसको लेकर निकले। साथ ही तेज़ गरज के साथ तूफान भी आने वाला है, और तो और 11:30 से 1:30 बजे तक बारिश की जो संभावना है वो तकरीबन 100% है। दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोलकाता में 33 डिग्री के पास होने जा रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और नमी की अगर बात करें, नमी भी तो बनी रहेगी, और नमी जब बनी रहती है तो उमस बहुत ज़्यादा है। वैसे कल बारिश जितनी बारिश हुई है, जो दर्ज किया गया है वो है 11.6 मिलीमीटर। और ये थी मौसम के बारे में जानकारी। और जब मौसम के बारे में हम जानकारी देते हैं तो मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि मौसम के बारे में आपको गीत सुनाए। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

अगर लव बर्ड्स ऐसा सोचते हैं कि बारिश होगी तब मिलेंगे, तब तो सोच लीजिए वो रोज ही मिल रहे हैं। खैर, रोज की तरह आइए बात करते हैं आज के दिन की खासियत के बारे में। अगर अखबार नहीं, इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो आज का दिन क्या है, मतलब क्या खासियत है, उसके बारे में

हैं, तो आज ही के दिन यानी कि 18 सितंबर सन 1948 में ऑपरेशन पोलो ख़त्म हुआ और इंडियन आर्मी ने निज़ाम की सेना को हराया और हैदराबाद रियासत को आज़ाद भारत से मिलाया गया। तो ये थी बहुत ख़ास बात जो कि सन 1948 में हुई थी। साथ ही आपको बताएं कि सन 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज ही के दिन पुरी जगन्नाथ धाम पर कब्ज़ा किया था। अगर ज़रा और इतिहास को देखें, थोड़ा सा और पीछे जाएं, तो वर्ल्ड यानी कि अगर ग्लोब को देखें, वर्ल्ड के इतिहास को देखें, तो आज ही के दिन सन 1810 में चिली को, साउथ अमेरिका के चिली को आज ही के दिन स्वाधीनता मिली थी। चिली ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान 18 सितंबर को सन 1810 को किया था और इसलिए आज चिली अपना नेशनल डे या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। और आज के दिन की एक और स्पेशलिटी है, वो है कि आज वर्ल्ड बैम्बू डे और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है। इसका अर्थ है वर्ल्ड बैम्बू डे की बात अगर करें तो इसकी शुरुआत सन 2009 में बैंकॉक में हुआ था। जी हाँ, आज के दिन ये कह सकते हैं कि 100 देशों में इसे मनाया जाता है और बांस को, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड या कह सकते हैं कि गरीब का लकड़ी भी कहते हैं और ये दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। पर्यावरण को अगर देखें तो ये एक पेड़ से 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और मिट्टी को बहने से, जो कि सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं, उसे रोकता है। मजबूती के मामले में अगर देखें तो इसको स्टील से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है और इसीलिए घर, फर्नीचर, ब्रिज बनाने में इसकी ज़रूरत होती है। और अगर आप देखेंगे कि अगर मकान में कोई रेनोवेशन किया जाता है ऊँची ऊँची बिल्डिंगों में, तो बाँस को ही बांधा जाता है। तो ये थी वर्ल्ड बैम्बू डे के ऊपर बातें और साथ ही आज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है। क्या है ये? दरअसल इसको 2003 में इसकी शुरुआत हुई और इसका मकसद है कि आम लोगों को अपने आसपास के पानी यानी कि नदी, जो भी वाटर बॉडीज हैं, नदी, तालाब, कुआं की जांच करने के लिए जागरूक करना। इस दिन लोगों को कहते हैं कि अपने पास के पानी का टेम्परेचर, पीएच लेवल, ऑक्सीजन कितना है, ये टेस्ट करो और अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको दिख रहा है कि ठीक नहीं है तो तुरंत इसके बारे में रिपोर्ट कीजिए। तो ये थी आज के दिन की खासियत। वैसे अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 7:57 48 सेकेंड मुझे अब आपसे अनुमति लेना है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी कार्यक्रम रसधारा पर, जो कि 9:10 से होगा संचयिता पर, और एक बार फिर 10:02 पर जुड़ जाएंगे FM रेनबो पर लेकर गपशप। तो आज का गपशप क्या होगा वो तो हम उसी समय बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। और हाँ, आप जो मुझे मालूम है कई लोग पूजा में जुड़े हुए हैं, पूजा से जुड़े हुए हैं, आज बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करना है, तो उसके तैयारियों में आप जुड़े हुए हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट है और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और

0: शिक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
4: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
3: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
5: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
3: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास

0: पास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन, यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का

0: ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपने उत्तर कुंजी यूजीसी नेट के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर ईडी की तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक की सरायकालेखा शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, उड़ीसा, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। The Election Commission of India has barred both factions of the

हक प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ಒಂದಟಿ ಚದಿಯಲ್ಲ ಮೊಂಬತಿ ಬಗ್ಗ ಆಕಾಶೆ ಕುಡಿದೆ ಝಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಬಗ್ಗ ಎಟ್ಕತಿ ಚದಿಯಲ್ಲ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है.
2: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा. यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी. आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी

0: गुट है और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उपहिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जापान के कुरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टेक बॉल में भी मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigam and Rejinagar in West Bengal. Here is a report from our correspondent.
4: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संबोधित करने की अनुमति देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। भारत ने पिछले दो महीनों में बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 3 नागरिकों की हत्या की। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 हुई। 6145 लोग अभी भी लापता। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे

0: ट्वेंटी क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। अमेरिका ने इससे पहले महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। प्रस्ताव कल भारी बहुमत से पारित हुआ। इसके पक्ष में 152 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका, इसराइल और पराग्वे ने इसके विरोध में वोट किया। 4 देश मतदान से दूर रहे। चीन और रूस ने भी अब्बास को वीजा नहीं देने के अमरीकी फैसले की आलोचना की थी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सेना प्रमुख आज मॉस्को स्थित राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने थिम्फू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और भूटान के बीच विशेष मित्रता को और मजबूत करने के लिए भूटान नरेश का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश से भारत आने वाली हिल्सा मछली अब भारत से बांग्लादेश निर्यात की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार पिछले 2 महीनों में भारत से करीब 500 टन हिल्सा बांग्लादेश भेजी जा चुकी है। कारोबारियों को जल्द ही 150 से 200 टन अतिरिक्त हिल्सा निर्यात होने की उम्मीद है। परंपरागत रूप से बांग्लादेश की हिल्सा का भारतीय बाजार, विशेषकर पश्चिम बंगाल में वर्चस्व रहा है, लेकिन बांग्लादेश में घरेलू उत्पादन घटने से भारतीय हिल्सा की मांग बढ़ी है। निर्यात की गई हिल्सा की बड़ी मात्रा गुजरात के भरूच से भेजी गई है, जबकि कुछ खेप पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित थोक मछली बाजार से बांग्लादेश पहुंची है। हिल्सा की चटगांव और सिलहट में विशेष मांग है। विश्व दर्पण के लिए नवीन सक्सेना।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने कल से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली और अपने परिसरों में सफाई अभियान चलाया। अजरबैजान, आइसलैंड, सऊदी अरब, लाइबेरिया और तंजानिया में भी भारतीय मिशनों ने अभियान की शुरुआत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत विषय के साथ चलाया जा रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3 नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया है। एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार ग्वादर जिले के दन्नुक के कुल्दान इलाके में 3 शव मिले हैं। ये घटना प्रांत में कथित गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन लापता किए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच सामने आई है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांख ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा

0: पाकिस्तान में जबरन गायब किए जाने और कथित गैर न्यायिक हत्याओं को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है। अमेरिका ने क्यूबा की निकेल खनन उद्योग और सैन्य अनुसंधान संस्थानों को निशाना बनाते हुए 8 क्यूबाई संस्थाओं और 3 सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
1: अमरीकी विदेश विभाग ने क्यूबा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह खनिजों से होने वाली आय का इस्तेमाल आम नागरिकों के लाभ के बजाय अपने सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में कर रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा सरकार दशकों से देश के संसाधनों को एक सीमित और भ्रष्ट सैन्य अभिजात वर्ग के हाथों में पहुंचाती रही है। इन प्रतिबंधों के तहत नामित पक्षों की अमरीका में मौजूद या अमरीकी नागरिकों के नियंत्रण वाली संपत्ति और संपत्ति में हितों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमरीकी प्रशासन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी समेत शीर्ष ईरानी अधिकारियों का वीजा मंजूर कर दिया है। ईरान को अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच 6 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है और गतिरोध बना हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष फिर से लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी जारी है, लेकिन हाल ही में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के अंतर्गत विदेशों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज करना, हथियारों के सौदों पर रोक और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विकास पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूरोपीय संघ यूक्रेन को मिसाइल और ड्रोन खरीदने के लिए 3.3 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद देगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों के बीच यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूरोपीय संघ ने अपने यूक्रेन सपोर्ट लोन के तहत पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी धनराशि मंजूर की है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 हो गई है, जबकि 6145 लोग अभी भी लापता हैं। प्रभावित जिलों में बचाव, राहत और पुनर्वास अभियान जारी है। सबसे अधिक मौत चितवन में हुई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
2: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संबोधित करने की अनुमति देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। भारत ने पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 3 नागरिकों की हत्या की। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, this is Akashwani. I am VC Pramod with the world news. The headlines. India votes for United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address high-level meeting of assembly in New York. Army Chief General Dhiraj Seth visits Russian Land Forces headquarters as part of his 3-day official visit to Russia. India exports around 500 tons of Hilsa fish to Bangladesh in the past 2 months. 3 civilians killed by Pakistani forces in Balochistan. Death toll in Nepal flood climbs to 1,410, while 6,145 people remain missing. And in men's cricket, India crushed

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरलम और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे कोच्चि में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को वे बंगलुरु में भारतीय वायुसेना को तेजस के 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बुनियादी प्रशिक्षण विमान सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
2: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। निदेशालय ने कहा है कि कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में बड़े पैमाने पर हुई कथित धोखाधड़ी की जांच के अंतर्गत की जा रही है। भारत ने न्यूयॉर्क में अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा वीडियो के जरिए संबोधित करने के पक्ष में मतदान किया है। इससे पहले पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा वीजा न मिलने पर श्री अब्बास को वीडियो के जरिए महासभा को संबोधित करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: अब एक आवश्यक सूचना। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह यानी कि दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष में संपर्क कर सकते हैं। हर टेलीफोन नंबर के पहले 033 अवश्य लगाएं। ये संख्या इस प्रकार है 2212-0252, 2212-0252, 2212-0612, 2212-0612, 2212-0500, 2212-0500 पर संपर्क कर सकते हैं। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों अथवा ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखा होना अनिवार्य है। तो ये थी सूचना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए बताते हैं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर लो आ गई उनकी याद। और अब तक मैंने जो भी गीत आपको सुनाए हैं आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जी हाँ, 80 और 90 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी और जया प्रदा का जादू चल रहा था, तब एक ऐसी अभिनेत्री भी थी जिसने अपनी सादगी, तेजस्वी आँखों, शानदार नृत्यों और दमदार अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, वो नाम है मीनाक्षी शेषाद्री का। उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में भी याद किया जाता है, जिनका सबसे यादगार किरदार अगर दिखा वो था दामिनी में। जी हाँ, दामिनी को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं।

हम भी बेचैन हैं आपको बताने के लिए मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में, जिनके जलवे, जिनके एक्टिंग के जलवे 80s एंड 90s में बॉलीवुड को बिल्कुल, वो कह रहे थे, रूल करता था। जी हाँ, मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला शेषाद्री है और उनका जन्म 16 नवंबर सन 1963 को सिंदरी, यानी कि धनबाद के सिंदरी, जो अब झारखंड में गिना जाता है, एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि शास्त्रीय नृत्य में थी। उनकी माँ भी एक भरतनाट्यम नृत्यांगना थी और इसलिए मीनाक्षी ने बहुत छोटी उम्र से ही भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उड़ीसी नृत्य की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। नृत्य के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। नॉर्मली ना ये मिलता नहीं, अगर कोई इंसान किसी खास चीज़ पर रुचि रखता है तो पढ़ाई में शायद कहीं वो मतलब थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हैं ना, मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री के ऊपर और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ 17 साल की उम्र में, यानी कि 1981 में मीनाक्षी ने मिस इंडिया का खिताब जीता और इस जीत के बाद उन्हें फिल्मों के तो इतने प्रस्ताव मिले ही और फिर ये था कि उन्हें, वो कहते हैं ना, पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा।

आनंद बख्शी का लिखा गीत और आर डी बर्मन का संगीत। आपने सुना ये फिल्म डकैत से, और इस फिल्म में नजर आए थे सनील देओल के साथ मीनाक्षी शेषाद्री। वैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने, जी हाँ, मीनाक्षी शेषाद्री ने मिस इंडिया का खिताब जीता और फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1983, जी हाँ, सन 1983 में मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू से की, जो ज़्यादा सफल नहीं रही। लेकिन उसी साल सुभाष घई का फिल्म हीरो रिलीज हुआ, जिसमें वो नजर आई जैकी श्रॉफ के साथ, और ये फिल्म सुपर डुपर रही और रातों रात मीनाक्षी स्टार बन गई। 1983 से 1996 तक मीनाक्षी ने लगभग 13 साल तक हिंदी सिनेमा के पर्दे पर राज किया। उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, हर तरह के किरदार निभाए, और उनकी प्रमुख फिल्में थीं मेरी जंग, जो कि 1985 में रिलीज हुई, 1986 में स्वाति और दहलीज। और इस फिल्म में, इन दोनों फिल्मों में उनके जो आलोचक थे वो भी उनकी सराहना की। फिर 1988 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन के साथ शहनशाह, 1990 में घायल और जुर्म, साथी घर हो तो ऐसा, 1993 में दामिनी, और सच पूछिए तो ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इसमें एक ऐसी बहू की कहानी थी जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर इंसाफ के लिए लड़ती है, और इस फिल्म ने उन्हें एक सशक्त महिला की पहचान दी थी। फिलहाल दामिनी का गाना तो मैंने आपको सुनाया ही, अब आइए एक और खूबसूरत गीत सुनाती हूँ जो उन पर पिक्चराइज किया था, फिल्म का नाम गंगा जमुना सरस्वती।

मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने करियर के शिखर पर सन 1995 में एक बैंकर के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ शादी की और हमेशा के लिए 1996 में फिल्म घातक करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर हमेशा के लिए अमेरिका टेक्सास में जाकर बस गईं और उन्होंने वहां पर अपने शौक को पूरा करने के लिए एक डांस स्कूल भी खोला जहां वो भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी सिखाती हैं। लेकिन लगभग 30 साल बाद एक बार फिर मीनाक्षी शेषाद्री मुंबई वापस आ गई हैं और उन्होंने ये बताया है कि वो कुछ साबित नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अपने एक्टिंग का जो जुनून है वो एक बार फिर से उसको आजमाना चाहती हैं और अच्छे अच्छे रोल्स करना चाहती हैं। जी हाँ, एक बात तो तय है कि उनके जीवन को देखकर हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता के शिखर पर होते हुए भी अपने परिवार और अपने जुनून के लिए फैसला लेना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने शोहरत को छोड़कर एक आम जीवन को चुना और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो अपने पहले प्यार यानी कि अभिनय और नृत्य के पास वापस आ गई। वे आज भी गरिमा, प्रतिभा और संस्कृति की प्रतीक हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें और वो जो उनका जो जुनून है वो जुनून कायम रहे और उसके ऊपर बेइंतहा काम करती रहें। फिलहाल इस छोटे से पैगाम के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, लेकिन हाँ 12 बजे एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम सुरभि को लेकर, लेकिन कहाँ, संचयिता पर। अभी 100.1 FM गोल्ड से पॉपी आप सबसे नमस्कार कहकर अलविदा कहती है। जाते जाते आवारगी का ये गीत आप सभी दोस्तों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

0: 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मदलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo Dien Thungyel, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galtsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma complimented White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing 2 terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K Police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. Defense Minister Rajnath Singh will visit Keralam and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said he will attend the inaugural ceremony of an event organized by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily in Kochi, Keralam. Later in the evening, the Defense Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft, Tejas final operational clearance twin-seater trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force and Dhruv NG helicopters to Pawan Hans Limited. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly UNGA resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the US next week via video. Earlier, the US refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the US, Israel and Paraguay voted against it and four others formally abstained. US Deputy Permanent Representative Tammy Bruce defended the video refusal, accusing Palestine of not giving up on terrorism. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. Indian tech ball debutant Quincy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quincy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kuem Yen DY in Group A match 3. Benchmark domestic equity indices were trading moderately up in the forenoon session today. The Sensex rose 113 points to 74,427, while the Nifty added 30 points to 23,301 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart Leon Po Dien Thungyel reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Pratik Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our Jammu correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with JNK police and CRPF once again underscores the strength of joint inter-agency coordination in the counter-terrorism grid. Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman has extended warm birthday greetings to Prime Minister Narendra Modi on his 76th birthday. In a message posted on X, PM Rahman extended his warmest birthday wishes to Modi by wishing him good health and high spirits as he continues his dedicated service to the people of India. PM Modi responded by thanking Rahman for his message. The message was shared by the High Commission of India in Bangladesh on its official Facebook page. Earlier, the Prime Minister's office also posted a greeting card featuring PM Modi's photograph on its official Facebook page, wishing the Indian Prime Minister on his birthday. Defense Minister Rajnath Singh will visit Kerala and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said that he will attend the inaugural ceremony of an event organized by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily, in Kochi, Kerala. Later in the evening, the Defence Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force and Dhruv NG helicopters to Pawan Hans Limited. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the US next week via video. Earlier, the US refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the US, Israel and Paraguay voted against it. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Toor have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.

0: It up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin DY in Group A, Match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HDT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundban and Gadchandur in Maharashtra. Security forces killed 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान

0: एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
1: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स

0: उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में

एशियाई खेलों में भारत की ओर से टैगबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC तेजस और ST-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रेस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल दुएंगल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये अपतटीय अभियानों सहित असैन उपयोगों के लिए उपयुक्त है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के मुकुटबन आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन महाराष्ट्र के मौजूदा वर्धा मानिगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के पलवल में खुले मैनहोल में गिरकर 4 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पलवल के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है, नशा मुकाना सारा। यात्रा के दौरान सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और नशा मुक्ति के अभियान को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टैग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसोजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टैग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसोजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस

0: আবহাওয়ার খবর বলে দিই আপনাদের, আগামী 2-3 ঘন্টার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের বেশ কিছু অংশে, এবং আরও রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই মুকেশ কুমার। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा दिया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह दिया गया है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये अपतटीय अभियानों सहित असैन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भगवान श्री राम की कथा भारत तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे एशिया में फैली हुई है और गांवों तथा शहरों दोनों में इसकी झलक मिलती है। श्री सिंह केरलम में कोच्चि में आयोजित एक महाकाव्य अनेक कथाएं रामकथा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंग्याल के साथ द्विपक्षीय सहयोग की सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। डॉ. जयशंकर और श्री धुंग्याल ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मक्का पर हुए हमले के प्रयास के बाद भी भारत ने एक बयान जारी किया था। जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं। ये बाब अल मंडाब से होकर गुजरने वाले नौवहन स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और एक भारतीय युद्धपोत के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने विरोध पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है।
1: पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और वह अभी भी समुद्र में है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रूप में माना जाएगा। इसके अंतर्गत पार्टी के नियंत्रण को लेकर आंतरिक विवाद के बीच अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नाम और फूल घास चिन्ह को निलंबित कर दिया गया था। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजिनगढ़ में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित मंजरी वी महाजन से बातचीत प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर उनके कार्यों पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। इसे आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुन सकते हैं। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विमसी जोआकिम डिसोजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसोजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination.

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

ये जो ये खूबसूरत पंक्तियां थी इस गीत की, एकदम आपके ही लिए मानो हमने बयां की हो, आप शामिल हैं, तो बस ये हमारी जो महफिल है, ये गुलजार है, इसमें एक भी बात झूठी नहीं, सारी की सारी बातें सच्ची। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, चाय और क्लासिक्स चैनिका है आपके साथ। FM गोल्ड कोलकाता पर जुड़े हैं आप हमारे साथ। अभी फिलहाल घड़ी में समय 5:22:40। हमने मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत सा गीत सुना, फिल्म का नाम था आप तो ऐसे न थे। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार उषा खन्ना है। अब बेहद जरूरी चंद बातें आपके साथ अभी मुझे साझा करनी है, वो ये है कि मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान, बीरभूम जिलों के लिए, साथ ही बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम के लिए भी। ये जो चेतावनी जारी की गई है ये आने वाले 2 से 3 घंटों के लिए है।

आंधी तूफान आने की आशंका है, साथ ही गरज के साथ बिजली गिरने के भी आसार हैं। बहुत तेज बारिश होगी और हवाएं जो हैं वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। और जैसे कि मैंने कहा, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम के लोगों के लिए आने वाले 2 से 3 घंटों में ये जो वार्निंग है, ये जो चेतावनी है, ये जारी की है मौसम विभाग ने। इसके अलावा ऐसी ही एक और मैं आपको अभी चेतावनी देना चाहूंगी। ये चेतावनी दी गई है हुगली और नदिया जिलों के लिए। हुगली, नदिया और आगे इससे पहले जिन जिलों के नाम मैंने आपको बताए, तो सब मिलाकर एक साथ मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, हुगली और नदिया जिलों में भी ऐसी ही परिस्थिति रहने की पूरी संभावना है। यानी आंधी तूफान के साथ तेज बिजली गिरने की आशंका है, बहुत तेज बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी। आप लोग कृपया सावधानी बरतें, सुरक्षित स्थान पर आश्रय अवश्य लें। और दक्षिण 24 परगना जिले के लिए भी ऐसी ही चेतावनी जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट यानी नारंगी सतर्कता जारी की गई है इन सभी जिलों के लिए। तो आने वाले 2 से 3 घंटों के लिए आप लोग अवश्य ही सावधान रहें, सचेत रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और भी कोई अगर खबर हमें मिलती है मौसम विभाग से तो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। चायो क्लासिक्स में क्लासिक्स का सिलसिला आगे बढ़ता रहे, बस यही तो हमारी ख्वाहिश है आज और हमेशा रहती है। लेकिन चंद बातें भी साथ साथ हमें आपस में जोड़ती चलें, ये भी मंशा दिल में रहती है। कितना कुछ है आपको बताने के लिए मेरे पास, कितना कुछ है जो मुझे लगता है कि मैं अगर आपको बताऊं तो आप एक्साइटेड फील करेंगे, या फिर किसी एक विषय को लेकर, जैसे मैंने कोई एक चीज़ जानकर अनुभव किया है, मुझे अच्छा लगा है, तो आपको भी वो जानकर प्रसन्नता होगी या आप हैरत में पड़ेंगे, आश्चर्य होगा। कितना कुछ है इस दुनिया में जो हमें विस्मय से भर देता है। अच्छा, आज के दिन की कुछ खास बर्थडेज के बारे में अभी तो फिलहाल आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। आज पता है महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह का जन्मदिन है, या मैं कहूं कि जयंती है। ऐसे लोगों की जयंती हम कहें तो कितना अजीब सा लगता है, क्योंकि ये दुनिया छोड़कर चले भी जाए तब भी उनका जो अस्तित्व है वो यही बना रहता है उनके काम के जरिए। जिस तरह कि वो जिंदगी जीते हैं, वो जिंदगी उनको अमर कर देती है उनकी मौत के बाद भी। तो महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी एक ऐसा ही नाम है। 18 सितंबर 1895 में आपका जन्म हुआ। जितना बड़ा आपका नाम है उतना ही बड़ा आपका कद है। भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस राजा का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। पोलैंड में तो उनके नाम पर कई सड़कें और योजनाओं के नाम रखे गए हैं। क्यों, क्या खास बात थी महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी के इस नाम में या फिर उनके जीवन में? एक तो उनकी पहचान ये भी है कि भारत के मशहूर क्रिकेटर के एस रणजीत सिंह जी के भतीजे थे आप, और लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1921 में ब्रिटिश सेना का हिस्सा बने, और आगे चलकर अपने चाचा के निधन के बाद उन्होंने 1933 में नवानगर की गद्दी संभाली और महाराजा जाम साहब बन गए। महाराजा बनने के बाद अपने चाचा की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया, और 1935 में आपको नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, और अपने चाचा की क्रिकेट परंपरा को कायम रखते हुए 1937-1938 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया, और बहुत सारे प्रमुख खेल क्लबों के आप सदस्य भी रहे, और 33-34 सीजन के दौरान आपने एक फर्स्ट डिविजन मैच भी खेला था जो कि भारत और सिलोन के बीच खेला गया था। महाराजा दिग्विजय सिंह को पोलैंड में लोग मसीहा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो पोलैंड के आम लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के समय वहां के सैनिकों ने अपनी महिलाओं और बच्चों को एक

जहाज में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया था। और ये जहाज जब भटकते हुए गुजरात के जामनगर के तट पर पहुंचा था, तब महाराजा दिग्विजय सिंह ने पोलिश लोगों को शरण दी थी। उन्होंने न सिर्फ हजारों पोलिश लोगों की मदद की, बल्कि 9 सालों तक उनका ख्याल रखा था। रहने, खाने और पढ़ाई लिखाई करने के लिए हर चीज का उन्होंने इंतजाम किया। और इन्हीं शरणार्थी बच्चों में से एक बच्चा बाद में पोलैंड का पीएम बना और महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह को अमर कर दिया। पोलैंड की राजधानी वारसा में कई सड़कों के नाम उनके नाम पर हैं। उनके नाम से कई योजनाएं भी आप भी अभी भी अगर आप जाएं तो वहां आपको मिलेंगी। और दुनिया भर में द गुड महाराजा के रूप में आप मशहूर हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की जयंती पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए अब क्लासिक्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम बेमिसाल।

0: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: प्यारे श्रोताओं, परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे न्याय मित्र योजना की। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की यह एक पहल

0: है जिसे अदालतों में 10 से 15 साल से लंबित पुराने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। यह योजना मामलों की सक्रिय रूप से पहचान करके कानूनी सलाह देकर और हाशिए पर पड़े आवेदकों को प्रायोरिटी बेसिस पर समाधान के लिए लोक अदालतों में भेजकर उन लोगों की मदद करती है जो लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों के कारण परेशान हैं। ये योजना कैसे काम करती है, आपके दिल में अगर ये सवाल है तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुराने और पेंडिंग जो मामले हैं उनकी पहचान की जाती है, जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है, और यही नहीं मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए लोक अदालत भेजा जाता है। अच्छा, कौन बनता है न्याय मित्र? रिटायर्ड जज या रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें कानून की अच्छी समझ हो वही न्याय मित्र के रूप में काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसके लिए आवेदन कैसे करना है? इस योजना का प्रबंधन जो है वो न्याय विभाग करता है। इसके आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में बने जिला सुविधा केंद्रों के जरिए जमा और प्रबंधित किए जाते हैं। पात्रता क्या है इस योजना की, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं कि न्याय मित्रों के लिए पात्रता पूर्व पद उनका है, जो वो रिटायर्ड जज हो सकते हैं या रिटायर्ड प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारी हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और आवेदक के पास कानूनी क्षेत्र का अनुभव या लॉ में शैक्षणिक डिग्री होनी चाहिए, और जो लाभार्थी हैं या पीड़ित वादी जिन्हें हम कहेंगे उनके लिए क्या है एलिजिबिलिटी, आवेदक ऐसा पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए जिसका मुकदमा या मामला निचले या अधीनस्थ न्यायालयों में 10 साल से अधिक समय से पेंडिंग हो। आवेदक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गरीबी या सामाजिक कारणों से अच्छी कानूनी मदद पाने में असमर्थ हो। आवेदक अदालत या जांच की प्रक्रिया में हुई अत्यधिक देरी से परेशान हो या पीड़ित हो। तो आवेदक को कानूनी मदद पाने के लिए चुने गए जिलों के जिला सुविधा केंद्र में जाना होगा। न्याय मित्र खुद भी पोर्टल के जरिए पेंडिंग केसों की पहचान करते हैं और मदद के लिए पीड़ितों के साथ संपर्क करते हैं। केस को समझकर वो जरूरी कानूनी सलाह देते हैं और सरकारी विभागों के साथ मिलकर हल निकालते हैं, और आवेदक को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या टेली लॉ के साथ जोड़ने का काम भी करते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने जाना न्याय मित्र योजना के बारे में।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: क्या आपको पता है कि कई सारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी पद्म भूषण शबाना आजमी का आज जन्मदिन है। अभिनय और साहित्य के झूले में बीता आपका बचपन, और अगर आप फिल्मों में ना आती तो क्या ही फील्ड चुनती हैं अपने लिए। माहौल और तैयारी साथ में कूट कूट कर भरी हुई प्रतिभा, इतना परफेक्ट सेटिंग भगवान कैसे बना लेता है कभी कभी किसी के लिए, जब वो जानता है कि जिंदगी में ये जो इंसान है या व्यक्ति है ये जरूर कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा। तो पूरी कायनात जो है वो उसे सपोर्ट करती है, उसको नर्चर करती है। 1974 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा आपने और आज भी सक्रिय हैं। नाटक तुम्हारी अमृता और अंकुर, वंडी, मासूम, फायर, निशांत, जुनून, अर्थ, मकड़ी और मृत्युदंड जैसी फिल्मों के साथ साथ कमर्शियल फिल्मों में भी आपने अपना लोहा मनवाया। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और घूमर जैसी फिल्मों में आज भी जब आप दिखती हैं स्क्रीन पर तो हम सब जो हैं वो दिल पर हाथ रख लेते हैं कि इतनी खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस कैसे किसी की हो सकती है। अभी भी उसी तरह की उम्दा अदाकारी शबाना आजमी कर पाती, कर लेती हैं, कितनी एफर्टलेसली। और बस यही हमारी मनोकामना है, शुभकामना है आपके लिए कि आप यूं ही अपनी अदाकारी का जादू बिखेरती रहें। जन्मदिन की आपको ढेर सारी बधाई, और इस मौके पर चलिए गीत सुना जाए आप ही की फिल्म से, आप सबके लिए मासूम से लता मंगेशकर की आवाज़।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: एक विशेष सूचना। अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 3/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2 एमजी रोड हावड़ा, चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 311101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल के संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें और इसके माध्यम से अधीक्षक आर

SSB मंडल हावड़ा 7111 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाएं। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वो इस निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641549 पर संपर्क किया जा सकता है। ध्यान रहे, डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो लिंक है वो यथा समय साझा कर दिया जाएगा। एक बात पर गौर करनी है वो यह कि कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित जो प्रकरण है उस पर इस डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

जारी है कार्यक्रम छायो क्लासिक्स, आप सुन रहे हैं चैनिका को। और देखते देखते ये जो हमारा पहला भाग है कार्यक्रम का, उसे हम समेटने वाले हैं, लेकिन चलते चलते आपको बताऊं कि आज का दिन किसी और वजह से भी बेहद खास है। कुछ एक बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के दूसरे भाग में जारी रहेंगी आज के दिन से जुड़ी, लेकिन आपको एकदम संक्षेप में बताऊं कि 1986 में आज ही के दिन महिला विमान चालकों ने पहली बार बंबई से, उस वक्त मुंबई को हम बंबई कहते थे, तो बंबई से गोवा के बीच जेट विमान उड़ाया था। और इस शानदार उपलब्धि में कैप्टन सौदामिनी देशमुख और को पायलट निवेदिता भसीन जैसे दिग्गज पायलटों की मुख्य भूमिका रही थी। और इसके ठीक पहले नवंबर 1985 में इसी महिला जोड़ी ने फोकर फ्रेंडशिप F-27 टर्बोप्रॉप विमान से कोलकाता से सिलचर के बीच देश की पहली ऑल वुमन क्रू फ्लाइट उड़ाई थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये जो कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई 18 सितंबर को, इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी अपने नाम की और निस्संदेह भारतीय एविएशन हिस्ट्री में यह एक बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और चलिए अब इस पहले भाग को हम समेटे चलते चलते चाय और क्लासिक्स के पहले भाग से आपको मैं इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। चले जाएंगे हम समाचारों की तरफ 6 बजे से, 6:10 तक न्यूज ब्रेक रहेगा, उसके बाद मैं लौटूंगी लेकर चाय और क्लासिक्स का दूसरा भाग। चलिए एक और गीत सुनते हैं। शबाना आजमी का जन्मदिन है, हमने जिक्र किया उनका, तो उन्हीं की एक फिल्म का गीत मैं आपको फिर से सुनवाऊ अवतार से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी ने यह गीत लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते रहें, साथ रहें FM गोल्ड कोलकाता।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी

0: साझेदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नायहान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के एक छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चाय और क्लासिक्स के दूसरे भाग में चैनिक आपका स्वागत करती है। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड।

स्कूल का था। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 6:11:03। इस दूसरे भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वो उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212061 अथवा 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द अवश्य ही लिखा होना चाहिए और ध्यान रहे कि इस डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

सुन रहे हैं आप चाय और क्लासिक सैनिका के साथ। आज विश्वकर्मा पूजा है और हर साल कन्या संक्रांति को ये खास दिन मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था और इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर माने जाते हैं विश्वकर्मा और वास्तुकार माने जाते हैं और इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह के मशीन की पूजा की जाती है और ये पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है। बड़ी धूमधाम से इस दिन का पालन होता है और यहाँ पर मैं एक बड़ी खास बात की तरफ आपका ध्यान मैं खींच ना चाहूंगी, वो ये है कि आधुनिक काल में जहां अन्य जितनी भी पूजा होती है हमारी देश में साल भर में वो हिंदू पंचांग के अनुसार होती है, मास, तिथि, पक्ष देखकर, लेकिन विश्वकर्मा पूजा हमेशा हमेशा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है इस विषय पर? तो आपने अगर नहीं भी सोचा होगा तो मैं आज आपको मजबूर कर रही हूँ सोचने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इससे ये पता चलता है कि विश्वकर्मा पूजा का वर्तमान स्वरूप बहुत पुराना नहीं है और हो सकता है, संभवतः इसका जो प्रचलन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में ही हुआ है और इसका एक सबूत है। अनेक यूरोपीय यात्रियों ने सितंबर माह में विश्वकर्मा पूजा का उल्लेख किया है। दुर्गा पूजा से अलग हटकर विश्वकर्मा पूजा के रूप में 1847 में प्रकाशित पुस्तक चार्ल्स आकलैंड ने एक पॉपुलर अकाउंट ऑफ द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया नामक किताब में लिखा है कि 1842 ईस्वी में दिनांक 15 सितंबर को भारत में औजार से काम करने वाले लोग उसे धोकर और लाल रंग से रंगकर, फूलों से सजाकर और सामने घुटने टेक कर पूजा करते हैं और अगले साल काम करने के दौरान नहीं वो टूटे, मतलब अगले साल जब वो पूरे साल भर जब काम करें औजारों को लेकर तो वो न टूटे इसकी प्रार्थना करते हैं। आकलैंड ने इसे पूजा ऑफ टूल्स कहा है अपनी किताब में, है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। तो अब आप थोड़ा थोड़ा मतलब दो और दो पांच नहीं, दो और दो चार होते हैं कभी कभी, ऐसी वाली स्थिति में पहुंच रहे होंगे कि शायद यही वजह है कि हर साल 17 सितंबर को, इस साल 18 को मनाई जा रही है, मतलब ये वजह हो सकती है कि एक ही डेट पे हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, एक और क्लासिक आपके लिए एकदम मेरे पिटारे में रेडी रेडी रेडी, एक युगल गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। और यहाँ पर

मैं बताऊं कि गीत जो है साहिर लुधियानवी ने लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम दीवार। सुनते रहे, साथ रहे एफएम गोल्ड पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स। मैं हूं आपके साथ 6:30 तक।

चलते चलते एक बहुत बहुत जरूरी बात, वो ये कि हमारे राज्य में 11 सितंबर तक मिले आंकड़ों के हिसाब से डेंगू के कुल मामले 5000 के पार पहुंच गए होंगे आज 18 तारीख, यानी और भी अगर फ्रेश आंकड़े आते हैं तो न जाने ये आंकड़ा कहां पहुंच गया है। तो पिछले एक महीने से मरीजों की संख्या बहुत

तेजी से बढ़ रही है, इसलिए प्लीज प्लीज सावधान रहिए। घर या आसपास कूलर, गमले, छत पर रखे गमले, घर के सामने रखे गमले, या फिर टायर होते हैं ना ऐसी चीज़ें, या पुराने बेकार पड़े बर्तन, या फिर घर में सजावट के लिए जो आप पानी का एक बड़ा पतीला रखते हैं, वहाँ फूल सजा कर रखते हैं, ये सभी जो जगह है यहाँ पर मच्छर जो है वो पार्टी करते हैं, अंडे देते हैं। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि पानी कहीं भी जमा ना हो। तेज़ बुखार, गंभीर सिरदर्द, आँखें आपकी अगर दुख रही हैं, जोड़ों में अगर दर्द है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सेल्फ मेडिकेशन लेने से बचें। बहुत ज़रूरी ये बातें जो मुझे आपसे कहनी कहनी थी। अब इनके बाद अब मेरे चलने का समय हो चला है। आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज़ भगवान दादा से चैनिका को दे दें इजाज़त।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्र कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन फ्लैट नोट।

0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग जगत में भारत भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर के 7% रहने का अनुमान जताया।
1: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। हालांकि विस्तृत बाजार में मुख्य सूचकांकों ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.2% के लाभ में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक में 1.7% की तेजी आई। इससे पहले वैश्विक संकेतों के कारण बाजार गैप अप के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर अनिश्चितता बनी रही और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ।
1: In the Indian stock market today, the Sensex ended largely unchanged while the Nifty closed on a positive note. The Sensex dipped 20 points to close at 74,295. The Nifty added 76 points to settle at 23,346. However, the broader market outperformed the frontline indices. The Nifty Midcap 100 index climbed 1.2%, while the Nifty Small Cap 100 index surged 1.7%. Earlier, the markets opened with a gap up amid positive global cues and traded within a narrow range throughout the session. However, uncertainty surrounding the closing auction session or CAS continued, with the Sensex slipping into negative territory after the CAS.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों में गिरावट दर्ज हुई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 4.3%, टाइटन में 2.1% और एशियन पेंट्स तथा मारुति में 2.2% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ अडानी पोर्ट्स में 3.7%, पावर ग्रिड में 2.5% और HDFC बैंक में 2.3% की बढ़त देखी गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 24 out of 28 sectors urged upward. Among the top gainers, services as well as industrials advanced 1.7%. Capital goods rose 1.6% and housing finance added 1.5%. In contrast, focused IT shed 1.4%, IT lost 1.3% and consumer durables dropped 1.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,630 companies advanced, shares of 1,703 companies declined, while shares of 215 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 95.88 रुपये पर बंद हुआ। उद्यन एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज बाजार पर नजर डालें तो सेंसेक्स में कुछ बहुत ज्यादा खास बदलाव नहीं दिखा गया, लेकिन 20 अंक की गिरावट थी। वहीं निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखी गई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 3,000 अंकों की गिरावट सेंसेक्स ने दर्ज की है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से एक लंबे समय बाद इतनी बड़ी गिरावट पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
2: अगर मैं दिलचस्प कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, पर एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, एक विद्यार्थी जो के रूप में अगर मैं खुद को मानूँ तो एक्चुअली हम लोगों को आदत पड़ गई थी कि वन वे मूवमेंट स्टॉक मार्केट में, अब नीचे गिर रही है तो ये कहा जा सकता है वो आदत, हमारी आदत बिगड़ गई थी। ना तो ये वन वे मूवमेंट अपवर्ड होता है ना नीचे होता है, जैसे समंदर में ज्वार भाटा होता है, अप एंड डाउन वेव्स आते हैं, उस तरीके से स्टॉक मार्केट होता है। अब जहाँ तक आज की इंटरेस्टिंग बात जो है, अगर उसमें सबसे दिलचस्प बात जो लगी, आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, एंड वही एक्चुअली स्टोरी है। जो आपके फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं वो जब भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत क्या होता है, बड़ी बड़े जो किरदार होते हैं किसी फिल्म में या किसी नाटक में, उनकी तरफ आपकी

0: नजर तो चली जाती है, पर जो साइड रोल्स करते हैं उन वहां से नजरें हट जाती है, लाइट उनके ऊपर नहीं गिरती है, पर यहाँ पे वहां पे एक्शन हो रहा है। तो जो आपने देखा होगा मिड कैप इंडेक्स में आपने कहा और स्मॉल कैप
1: अच्छी बढ़त है
0: जी, तो ये यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमारे जो भारतीय जो इंस्टीट्यूशनल वित्तीय संस्थान है वो निवेश करे जा रहे हैं, और आप और हम जैसे जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा भी वहीं जा रहा है। तो ये वो हैं जो आने वाले कल के सुपरस्टार्स कहा जा सकते हैं मिड कैप में, सब तो नहीं होते हैं, कई लार्ज कैप से मिड कैप में उनका डिमोशन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं कि प्रमोशन ही प्रमोशन होता है, डिमोशन भी हो जाता है, तो एक क्लास नीचे भी आप उतर सकते हैं। तो वो मिड कैप ये माना जा सकता है कि आगे चल के जो कल के जो सुपरस्टार्स हैं वो वहाँ हैं, तो वहाँ पे काफ़ी एक्शन देखा जा रहा है। और तो और ये दूसरी बात ये है कि अभी भी चाहे जितना भी कुछ लोग कहें, अभी भी लोग नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं, SIP अभी भी हो रहा है। तो अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को, आशीर्वादों को गिने, तो अभी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त हैं और वो चालू है। यस, देर इज़ नो डाउट कि 2000 पॉइंट जो आपने बोला निफ्टी में, तक 2000 से ज़्यादा गिरा है। अगर किसी ने निफ्टी 50 में डाला होगा तो वो शायद निराश हो जाएंगे। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, देखिए एक साल भर हो गया, ऊपर नीचे नहीं हुआ, पर ये अवधि भी तो नहीं है जहाँ पे आपको रिटर्न देखना है। आप अगर निफ्टी स्टॉक्स में डालते हैं, या इवन इंडेक्स फंड में डालते हैं, या इंडेक्स में स्टॉक्स में उस अनुपात में डालें जो सूचकांक में है, तब भी आपको कम से कम 5 से 8 साल की मियाद आपको देखनी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। उम्मीद है कि हम काफ़ी मैच्योर हो गए इक्विटी इन्वेस्टर्स, एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स, और मुझे लगता है आगे चल के और भी मैच्योर हो जाएंगे।
2: This is really not the time to. So, would you say that this period, while we are seeing these so much volatility in the markets because of whatever reasons, we all know the reasons for it, it's time now for the Indian investors to, you know, this is yet another learning curve for them, that there are going to be periods like this where you would just have no option but either to just sit still, or maybe, you know, look for opportunities where you can invest and, you know, make broaden your horizon. But this is yet another learning curve or learning lesson for the Indian investors to, you know, how to cope with periods like this when the markets are going to be in this kind of situation.
0: Very interesting point that you're making, Anubha. The reason why what you're saying is so pertinent is there's been a very large number of young investors who have come in.
2: Especially since COVID.
0: Yes, and my hats off to them, because people who are older than this generation, which is me, and there are many tens of thousands like me, we have seen where when the markets went up and everybody joined the party, and when markets went down everybody fled. So that hasn't happened. That's evolution for you.
2: Right.
0: So we obviously the new gen investors who have come in, they have come in with the right ideas. Technologies help them to quickly get in, but they have the stomach, which is such super news. You know, before, you know, people like us who have been observing the markets for so many decades now, we used to lament the fact that, you know, most of the people who are benefiting from Indian stock markets are not Indians. That is not happening anymore. So those are things which, no matter how much of analytical doom and gloom people might come up with, some of it may be justified, some of them may not be justified, you cannot write them off. It's still working out. But yes, you're right, the fact that you have to see these periods through is education, and that's where the interesting part is. So suppose, what could one lesson be? That okay, if you have invested in mutual funds, which is the fund manager or which is the fund which is doing well in this period?
2: Right.
0: Because if you can handle this period well, that means you are a man and not a boy. So I'm not
2: coming of age.
0: Yeah, men versus boys. It's from that standpoint I'm trying to say that. So these are the kind of things. Yes, of course, it's not always about doing something. It's also about thinking through, having a plan. And if the plan says don't do nothing, then it's a strategy, by the way.
2: Right. Let's move on.
1: Udin, ek bahut chota sa comment aapka is par janna chahunga. Closing auction session ko lekar ke. अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है। इसके बारे में सेबी के चेयरमैन ने भी कहा है कि हमें

0: जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, दिक्कत अटेंडेंस की है, जैसे किसी ने कहा है, जैसे कॉलेज और स्कूल में अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, सब हाथ उठा के या अटेंडेंस मार्क हो, तो यहाँ पे किसी ने कहा है और मेरे को बहुत अच्छा शब्द लगा कि ये अटेंडेंस प्रॉब्लम है। वहाँ पे अगर पार्टिसिपेशन बेहतर होगा, लोगों को मालूम होगा, तो एक जो, और ये जो चलन है, ये जो नॉर्म है, ये जो प्रैक्टिस है, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, इसको, इससे आप पीछे हट नहीं सकते।
0: बिल्कुल,
1: इवेंचुअली आपको यहीं जाना पड़ेगा। तो जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ।
0: आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में लगभग 2.7% का उछाल आया, जबकि जापान के निक्केई 225 में 1.4% की बढ़त देखी गई। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपने नीतिगत दरों को 25 आधार अंक बढ़ाकर 1.25% कर दिया है, जो 1995 के बाद से इसका सबसे ऊंचा स्तर है। बैंक के पॉलिसी बोर्ड ने 7-2 के बहुमत से इस कदम को मंजूरी दी। बैंक ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि श्रम और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण मूल महंगाई 2% के लक्ष्य से ऊपर जा सकती है। बोर्ड ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बढ़ती मांग और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से जापान की अर्थव्यवस्था तथा कीमतों पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जैसे जैसे आर्थिक हालात बदलेंगे, वो नीतिगत ब्याज दर बढ़ाना और मौद्रिक समायोजन के स्तर को व्यवस्थित करना जारी रखेगा। उधर यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों ही 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। उदन बैंक ऑफ जापान ने ये जो फैसला लिया है, अगर इसको येन की दृष्टि से देखें और कारोबार के नजरिए से देखें, तो कितना असर हम आगे चल करके देखेंगे और इसका इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है या और भी चीजें सामने हमारे नजर आएंगी?
1: बिल्कुल, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो आप अरे मुद्रास्फीति और दूसरी चीजों के बारे में बात की, ये कोई मामूली बातें नहीं है। जापान जाना जाता था बहुत ही सबड्यूड करेंसी हुआ करती थी, वहां येन में खरीदारी करके लोग, उसे कैरी ट्रेड बोला जाता था, उसकी तो मेरे ख्याल से धज्जियां उड़ रही हैं शायद इस वक्त। मेरे पास पूरा आकलन नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर अगर यहां चल रहा है, जापान की आर्थिक स्थिति को लेके, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके लोग नर्वस हैं। आपने देखा होगा कि काफी रिपोर्ट्स भी आई हैं कैसे अमरीकी जो प्रशासन है, देर मूविंग इन टैंडम विद जापानीज
0: मॉनिटरी, कह सकते यूएस सपोर्ट कर रहा है इसमें,
1: वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसके बारे में लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। किसी ने जुबान से तो नहीं बोला एडमिनिस्ट्रेशन से, पर ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो किया जा रहा है एंड लोग नर्वस हैं। और हर, और सिर्फ ये जापान में ही नहीं, हर विदेश, सारे देशों में बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है। अगर आप खर्चे ज़्यादा करेंगे तो आपको बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आप देखेंगे बॉन्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी जो यील्ड्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं और वो नर्वसनेस आपको दिख रही है, और जितना लॉन्ग टेन्योर्ड बॉन्ड्स हैं वहाँ पर और दिख रहा है।
2: Udayan, you know, if you look at the decision, of course, today Bank of Japan has raised interest rates. Just yesterday, Bank of England decided to hold its rate, but they said that it may go for a hike later in the year. And a day before that, US Fed raised, went in for the first rate hike in almost 3 years. And if I go a little back, the European Central Bank has also raised its rates. Now, what is interesting I find here is that while, the US Fed was a complete unanimous decision, and even ECB was a unanimous decision, but here we see in Bank of Japan, it's a 7-2 majority decision, and Bank of England. So, 6 members voted to hold while 3 others wanted a raise. What I find very interesting is, moving forward, when you look at the major central banks in the world, how challenging is it becoming for the central banks to maintain a balance between managing inflation, keeping it down, while at the same time giving impetus to the economy?
1: It doesn't help that the central banks haven't exactly covered themselves in glory in the last 5-6 years. And it is when you are ill, when you're not doing well, you're feeling weak, You need medicine, you need a change in lifestyle, you don't need steroids. So when you're pumping in cash, you're actually pumping steroids. And that's not exactly the, you know, the cure for this kind of an issue. So what it does, it distorts many things. It suddenly makes the equity markets look more booming than it should be. The fact that it's a risky asset, you start suddenly forget and you start doing it. So it's almost as if you're not in a normal state.

0: The Statistics and Program Implementation Ministry today released labor market snapshot of selected districts. The district level key labor market indicators were released by National Statistical Office for the first time. Around 57.8% of districts recorded female labor force participation rate, LFPR of 40% or above. Worker population ratio or WPR of the top 50% populous districts ranges between 37.3 to 76.7%. And among the 100 most populous districts, Surat and Gujarat recorded the highest levels of LFPR and WPR, while Darbhanga in Bihar recorded the lowest levels of LFPR and WPR.
1: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक भंडारित चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा अपरिवर्तित रहेगी और केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह कदम थोक उपभोक्ताओं के हितों और घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
0: Declined today. Brent crude was trading 1.4% down at $103.32 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 0.6% lower at $101.24 per barrel.
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.2% चढ़कर 1,53,727 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 3.1% की तेजी दर्ज करती हुई 2,36,908 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
0: Udayan, a very quick comment from you. The global crude oil prices have been, today was the third straight session when the prices have gone down. All the situation has not changed, a lot. What do you see where do you see the prices going before? And more importantly, why are we seeing this? Good for us, but the price is going down.
2: Well, it is just one of those hopes, a day of hope, when it was, people decided that they're going to feel hopeful.
0: Yeah.
2: You're right, it's nothing on the ground has changed. And the moment there's going to be some, Anubha, there's a underlining issue out here. Yeah. Oil producers cannot let these prices go on.
0: Right.
2: So there is going to be, there's a pressure to come to some kind of agreement which will bring the prices down.
0: Udayan, thank you so much for coming to our studios and joining us on the program.
2: Thank you.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Indian stock market, Sensex ends on a flat note. Nifty settles above 23,300. India is emerging as a trusted partner in global semiconductor industry, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. And global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth forecast to 7% for current financial year. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को दो हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं। ये हमले बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना

0: INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
1: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। हैदराबाद में आज दक्षिण क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का सफल समापन हुआ। सम्मेलन के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के किसानों को सहयोग देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। 50 से अधिक अन्य लोग घायल भी हुए हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी।

0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद

ये भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इस ममता बनर्जी और उपराय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गए। चुनावों के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में